अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी उम्मीद की किरण उसे मिटाने के लिए काफी होती है। जीवन हमें यही सिखाता है कि हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है।

जिंदगी एक बेहद खूबसूरत सफर है जहां हर मोड़ एक नया अनुभव है और एक नई सीख लेकर आता है। इसीलिए मुस्कुराते हुए हर पल को जीना और हर मंजिल का आनंद लेना ही जीवन की असली कला है।

और भोर सुहानी कार्यक्रम में चलते चलते अब आपको छोड़े जा रहे हैं अभिलाषा फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है रफ़ी साहब और मन्ना डे साहब ने। और इसी के साथ सुरभि आपसे चाहती है इजाज़त। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है।

0: 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
1: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा।
3: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में UCC विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
4: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी, और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
3: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिले।

0: और मोल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्डोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्डोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्डोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलदमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
1: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार आठवीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
2: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
3: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
4: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
5: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले पांचवे ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48

0: टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्य ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Monsoon session of parliament begins today. Government seeks cooperation of all political parties for smooth functioning of parliament. President Draupadi Murmu to hold delegation level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandhu in Chisinau today. Madhya Pradesh cabinet approves uniform civil code bill. Tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. US strikes Iran for 9th night as Strait of Hormuz tensions deepen. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings, a report.
4: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment

0: अरे तौबा, क्या करती हो
1: तुम? ये बताओ, तुमसे वो मिलेगी तो तुम क्या करोगे?

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित

0: रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माय व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: I appeal to members across all sides of the house to uphold the dignity, discipline and decorum of this august institution. While differences of opinion are integral to parliamentary democracy, they must be expressed in a manner that preserves the sanctity of the house.
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
4: मैं

0: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित चार अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
1: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले दो दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश कार्य जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
0: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
2: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
0: जी, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
2: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
0: जी, तो श्रोताओं अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
2: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पट्टियों पर पेंसिल नुमा नुकीली कील से लिखते थे, जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
2: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
0: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
2: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: तो श्रोताओं अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, शीर्षक है न्याय।
2: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज

0: आज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
1: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
2: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
3: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
4: ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
1: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
3: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है।
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
3: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
2: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
6: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
3: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
6: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
3: क्यों दे दो?
6: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
3: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
6: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
2: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
7: वजह हो।

0: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
1: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
2: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
3: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
2: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
2: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
4: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
3: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
4: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
2: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
5: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
2: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
5: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
1: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
6: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा गद्दी पे बैठ के
7: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
6: सिद्धार्थ ने बताया होगा कैसे
7: इस बारे में उनका है।
5: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
8: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
1: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
5: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
4: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
1: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
2: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
0: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।

अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

पौराणिक उपनिषद छांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात वो

प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम असि, अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

0: पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।
1: वत्स श्वेतकेतु, अज्ञात, क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
2: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा

0: श्वेत केतु।
1: जी पिताजी।
0: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
1: हाँ हाँ तात।
0: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
1: नहीं तात।
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
1: जी तात।
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
1: जी।
0: उसी से उसका अनुभव होता है किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
1: जी पिताजी।
0: वो उससे दूर है, वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स, जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: ये रहा फलतात।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी। पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी।
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि,
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: स्नेहितरे, इदुवरेगे प्रायोजित कार्यक्रम केळिदिरी।

0: और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत। पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून

0: सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनौ में स्टेफान सेल मारिसी स्वेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनौ में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
3: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश देने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स द्वितीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
4: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
6: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में

मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले दो से तीन दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेनदेन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ ಎಂ ರೈನ್ಬೋ 101.3 ಮೆಗಾಹೆರ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಸಮಯ ಆಗಿದೆ 11:15 ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಒದಗಿಸಿದ ಎಫ್ ಎಂ ರೈನ್ಬೋ ತುಸು ವಿಶ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಎಂದಿನಂತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:53 ಎಫ್ ಎಂ ರೈನ್ಬೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನ ತಲುಪಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಎಫ್ ಎಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೇಳಲಿದ್ದೀರಿ.
1: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll also be taking calls on your market related queries, but do remember that we don't address stock or company specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106, and of course do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi or from your mobile phone. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
2: नमस्कार. मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. श्रोताओं, हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है अर्थव्यवस्था पर विशेष पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
3: नमस्कार, धन्यवाद.
2: आइए श्रोताओं, एक नजर डालें आर्थिक सुर्खियों पर.
1: The benchmark domestic indices decline, Sensex drops nearly 450 points. Nifty settles at 24,239. India's core industries register growth of 5% in June this year and global crude oil prices decline.
2: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट. Sensex 400 अंकों से अधिक बढ़ा. Nifty 24,239 पर बंद हुआ. भारत के प्रमुख उद्योगों में इस साल जून माह में 5% की वृद्धि दर्ज की गई और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में

0: experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, हम ये रुक करते हैं कि और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे घरेलू शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज उतार चढ़ाव भरे सत्र के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 443 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक लुढ़ककर 77,709 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 96 अंक यानी लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,239 पर आ गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में आधे प्रतिशत से अधिक और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.2% की बढ़ोतरी हुई।
0: The benchmark domestic equity indices ended on a negative note today after a choppy trading session. The Sensex shed 443 points or 0.6% to close at 77,709. The Nifty lost 96 points or 0.4% to settle at 24,239. However, in the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose 0.6% and the small-cap 100 index added nearly 0.2%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयर्स में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयर्स में सबसे पहला नाम ट्रेंट 3%, पावर ग्रिड 1.8% और एनटीपीसी तथा भारतीय एयरटेल 1.5% से अधिक बढ़े। खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो एक्सिस बैंक 5.5%, एचडीएफसी बैंक 5% से अधिक और मारुति के शेयर्स में 2% से अधिक की गिरावट आई।
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, PSU banks jumped 3%, utilities rose 1.7% and power added 1.5%. In contrast, private banks dropped 2.1%, top 10 bank index slipped 1.9% and financial services lost 1%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,226 advanced, 2,039 companies declined and 249 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 96.45 रुपए पर बंद हुआ। शशिर, हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर ने आज मार्केट में एक निराशा ला दी है और मार्केट अंततः ग्रीन जोन में बंद हुआ।
2: बाजार में देखिए, जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी बैंक है, उनके शेयरों में उछाल देखने को मिला। निजी बैंक जो थे उनके शेयरों में गिरावट देखने को मिली। ये बहुत ही कहते हैं कि रेयर सिचुएशन होते हैं जब ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही क्षेत्र में दो अलग अलग तरीके के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। सरकारी बैंकों के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। अगर अब बीते कुछ दिनों में जो हम प्रमुख बैंकों की बात करें, उन सभी में हमने दोहरे अंकों में मुनाफा बढ़ते हुए देखा है और सालाना आधार पर एक बैंक का जो मुनाफा था वो लगभग 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। तो ऐसी सूरत में सरकारी बैंकों में एक उम्मीद बंधी है कि वहां पे नए सिरे से जो है वो खरीदारी की जा सकती है। निजी बैंकों के मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस तरीके की नहीं हुई है जो हमने सरकारी बैंकों में देखा। तो शायद एक ये कारण हो सकता है कि हमने एक तरफ सरकारी बैंक में बढ़ोतरी देखी, लेकिन निजी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज जो थी उनमें हमने गिरावट देखी। और पूरा बाजार अगर आप देखेंगे 400 पॉइंट के ऊपर जो गिरा, सेंसेक्स गिरा, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था
1: जी,
2: वो आप तेल, कच्चे तेल को लेकर के जो स्थिति है
1: जी,
2: उसका योगदान सबसे ज्यादा है। एक अनिश्चितता से बनी हुई है कि वहां पर क्या रहेगा
1: जी।
2: तो ये आज के बाजार में। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण हमने देखा कि दवा कंपनियों के शेयरों में भी आज अच्छी तेजी आई, और ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि चूंकि वो एक तरीके से डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है तो वहां पर हमने बढ़ोतरी देखी। तीसरा जो हमने चलन आज देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो आम तौर पे कहते कि इसमें बहुत तेजी भी आती है और बहुत गिरावट भी आती है, आज के गिरावट के दौर में भी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों आगे बढ़े।
0: राइट शशिर जी, वी आर टॉकिंग ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स, ऑलमोस्ट 5% ऑफ अ डिफरेंस। इफ यू लुक एट द पीएसयू बैंक्स जंप 3% एंड द प्राइवेट बैंक्स ड्रॉप 2.1%, ऑलमोस्ट अ 5% कॉन्ट्रास्ट। What accounts for that?
2: Yeah, the most important reason is the result. I mean, if you go by the financial performance of Q1, that's April to June period, where we have seen all the public sector banks have recorded double digit or even more than double digit growth in net profit. Even their net interest profit, the net interest income has also gone up. Of course, the net interest margin is slightly on the lower side, but hopes are really good for the public sector bank, and that is why we are seeing this kind of increase in there. On the contrary, the private sector banks, we are not seeing the kind of growth in the net product profit, and at the same time, one of the big private sector bank is also riddled in the controversy. That is also giving some kind of negative impression about the private sector banks, and that is why you are seeing a difference of 5% between the public sector bank and the private sector bank.
0: Another point, Shishirji, you know, given the situation in West Asia, you know, now on, and before we discuss, here is the first caller from Delhi, Premjeet. Premjeet ji.
3: Namaskar, Shishir sahab.
2: Namaskar.
3: आप सिन्हा साहब, आपने पिछली बार मुझे बताया था और मैंने पूरी वर्ल्ड घूमकर जब मैं आया तो मैंने ये एक्सक्यूट किया सर. मेरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न इस बार कि सर, ये जो रोबोटिक सिस्टम है वर्ल्ड वाइड, या जिसको आप AI कहते हैं, क्या ये हम पर हावी होगा, हमारे इंडियन यूथ जो इंटेलिजेंट है, या हम उन पे हावी रहेंगे? सर बड़ा छोटा सा प्रश्न है सर, पर विस्तार आप ही दे सकते हैं.
2: प्रेमजीत जी, प्रश्न छोटा नहीं है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है. और आज के दौर में कहें कि चाहे वो शेयर बाजार की बात करें या पूरे अर्थव्यवस्था की बात करें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसको लेकर के बहुत चर्चा चल रही है. और ये दो मुद्दे प्रमुख रूप से छाए हुए हैं. पहला कि क्या लोगों की नौकरियां जाएंगी, और दूसरा जो पारंपरिक सूचना तकनीक कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर्स की जो कन्वेंशनल कंपनीज है, उनका क्या होगा. तो पहले प्रश्न का जवाब मेरे हिसाब से ये है, जो हमने 1991 में देखा था, जब कंप्यूटर आया था तो लोगों ने कहा कि नौकरियां जाएंगी क्योंकि अब कंप्यूटर आ गया है. लेकिन जिन लोगों ने कंप्यूटर के साथ चलना शुरू किया, उनके लिए कौशल्य बढ़ा और उनके लिए मौके ज्यादा बने. यही पक्ष जो है वो आप AI के लिए भी कह सकते हैं कि AI के साथ अगर हम चले तो हमारा कौशल्य बढ़ता है, हमारे लिए मौके बनते हैं. आपका ये है कि कौन हावी होगा, हम हावी होंगे या AI हावी होगा. हम अगर हावी होने देंगे तो AI हम पर हावी होगा, क्योंकि कहते ना कि तकनीक के को हम अपना मददगार बनाए, तकनीक को अपना मालिक ना बनाए. तो अगर मददगार अगर आप बनाते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा. और दूसरा जो प्रश्न जो मैंने खुद ही किया कि जो पारंपरिक आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं उनका क्या होगा, तो अभी मैं दो जो बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं आईटी सेक्टर के, जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं नंदन निलेकनी या एनविद्या के जो CEO हैं, दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि पारंपरिक कंपनियों का महत्व बना रहेगा. तो मुझे लगता है कि AI को लेकर के डरने की जरूरत नहीं, बल्कि AI को साथ लेने की जरूरत है. इससे हमारा आपका कौशल बढ़ेगा और हम बाजार में एक बेहतर कर्मयोगी कह सकते हैं, आप कर्मवीर कह सकते हैं, उसके तौर पे हम आएंगे.
1: बिल्कुल श्रोताओं, जिस तरीके से प्रेमजीत ने हमसे सवाल पूछा, आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं. सवाल पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. आपके सवालों के जवाब लेकर के हमारे साथ शिशिर सिन्हा मौजूद है. और ये देखिए, कोलकाता से इस बीच हमारे पास कॉल आ रही है डी आर आचार्य की. जी, अपना सवाल पूछिए महोदय.
4: हाँ सर, मैडम, मेरा NPS में कुछ पैसा लगा है, ठीक है, तो बीच में जो लड़ाई चल रहा था, इसमें मेरे फंड के डाउन हो गया, इसमें पैसा लगाना ठीक होगा? और
2: देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो थोड़े समय की कोई बचत योजना नहीं है, वो आपके लिए एक भविष्य की सुरक्षा, एक सामाजिक सुरक्षा है. जब आप सेवानिवृत्त होंगे, वहां पर आपके लिए उससे जो भी पैसे आप जमा करेंगे, उससे आपको एक पेंशन मिलेगा. आप यदि निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत मददगार होगा. सरकारी क्षेत्र में भी 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी सरकारी क्षेत्र में आए हैं, उनके लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी. तो मुझे लगता है कि आपको ना ये रोज रोज के उतार चढ़ाव को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है. एक जब आपकी मैच्योरिटी जो 60 साल की उम्र में होती है, और अब 85 साल तक के लिए ये सुविधा दी गई है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए. चूंकि फंड जो है वो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा शेयरों में लगाया जाता है. आप विकल्प देते हैं, और अगर आपने विकल्प दिया है कि नहीं मेरा ज्यादा पैसा लगना चाहिए, तब भी आपको मौका मिलता है कि आप उसमें किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप घबराएं नहीं, इसके भविष्य को लेकर के बहुत चिंता अभी नहीं करनी चाहिए।
1: और दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं। केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: नमस्कार जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सर नमस्कार, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आईटी से बेटर किसी हमें पैसा लगाना चाहिए। और दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि जो अभी जो लगी कर लेंगे तो वहाँ काफी क्षति हो गई है कई देशों में, रूस, ईरान और अदर्स अरब देशों को। तो आने वाले समय में यहाँ काफी जो काफी दिल्ली के द्वारा बन रहे थे तो इस क्षेत्र में काफी स्कोप हो जाएगा, तो इसमें क्या बेनिफिट आगे हम
2: केशव जी, आपका जो पहला प्रश्न है कि एफडी का क्या भविष्य है, एफडी को लेकर के क्या करना चाहिए, मेरी हमेशा से राय रही है कि एफडी एक सुरक्षित निवेश है, चाहे वो आप सरकारी बैंक में करें या डाकघर में करें। सरकारी बैंक में ये होता है कि आपको अगर बैंक डूब जाता है तो भी 5 लाख रुपए तक की जो मूल रकम आपको मिलती है डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत। डाकघर में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, 1 रुपया भी आपका डूबने का खतरा नहीं होता है। तो फिक्स डिपॉजिट आपकी पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए, वो आपको एक सुरक्षा देता है। दूसरा प्रश्न था कि जगह जगह पर जो नुकसान हुए हैं, भवन नए सिरे से बनाने की जरूरत होगी। देखिए, ये बहुत ही दूर की सोच है, अभी की जो परिस्थिति है उसमें वहां पर उद्योगों की क्या स्थिति होगी, वहां किस तरीके से भवन निर्माण होगा, ये कहना भी बहुत ही मुश्किल है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये जल्द से जल्द खत्म हो, युद्ध शांति की स्थिति बने, तो निश्चित तौर पर दुनिया भर की कंपनियों के लिए मौके जो है वो बन सकते हैं।
0: Next caller is Rajiv from Delhi. Rajiv.
1: लगता है हमारा संपर्क टूट गया है राजीव जी से, आगे बढ़ते
0: yes.
1: हैं।
0: Yeah, moving on. The Ultratech Cement today reported its financial results for the first quarter of the current financial year. The company's consolidated revenue from operations rose by 15.8% year on year to 24,648 crore rupees. However, on a quarter-on-quarter basis, revenue dropped by 4.5%. The company's consolidated net profit grew by 16.8% to 2,599 crore rupees compared with the corresponding quarter of the previous financial year. However, on a sequential basis, the net profit declined by 12.8%.
1: और अब आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और जानते हैं कि एशियाई शेयर बाजार में क्या हलचल है। आज अधिकांश एशियाई शेयर बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.5%, ताइवान का ताइएक्स 0.5% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% लुढ़के। वहीं हांगकांग का हैंगसैंग लगभग 2.5% और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.8% बढ़ा। उधर छुट्टी के कारण जापान का बाजार बंद रहा। और रवि नारायण जी हमारे साथ श्रोताओं जुड़ रहे हैं भिलाई से। जी महोदय, अपना सवाल पूछिए, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
6: मार्केट मंत्रा, जल्दी जल्दी पूछता हूँ, दो छोटे छोटे सवाल हैं
1: जी।
6: पहला तो ये कि आज एक वो पंजाब नेशनल बैंक का मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए कुछ फॉरेन किसी का उसको पार्टनर बनाने का प्लान के बारे में पढ़ा मैंने, तो इसमें पहली बात तो ये कि बाहर से क्यों जरूरत पड़ रही पार्टनर की, और दूसरा इसमें इनकी मंशा क्या है पंजाब नेशनल बैंक की, ये जानना चाह रहा था। और दूसरा ये कि ये अभी तो ये फिर से वार बढ़ने के बावजूद भी पेट्रोल मतलब ये पेट्रोलियम का जो प्राइस है वो कैसे गिर रहा है, ये जानना चाह रहा था। थैंक यू।
2: पहले अगर आपके दूसरे प्रश्न का हम जवाब दे दें, क्योंकि पहले प्रश्न का जवाब इसीलिए नहीं दे सकते क्योंकि वह खास कंपनी और बैंक से जुड़ा हुआ है जिसकी योजनाओं की हम चर्चा यहाँ पर नहीं करते हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न है कि कच्चे तेल के भाव गिर रहे हैं, भाव गिरे नहीं, भाव तो बढ़े हैं, 80-85 के ऊपर चले गए हैं, तो वो तो हमारे लिए एक चिंता का विषय जरूर बन रहा है क्योंकि बीच में थोड़ी गिरावट आई थी तो एक राहत की उम्मीद बनी थी, अब फिर से बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उससे रुपए पर दबाव बन रहा है और आपने उसका रुपए का चाल भी देखा है। तो अभी के समय में लड़ाई जैसे जैसे बढ़ेगी कच्चे तेल के भाव में तेजी आने की आशंका है, क्योंकि लड़ाई केवल एक देश तक सीमित नहीं है, वो पूरे क्षेत्र में है और वो क्षेत्र ऐसा है जहां से 20% जो है पूरी दुनिया की आपूर्ति का जो है वहां से गुजरता है, तो जाहिर है उसका असर तो आपके पेट्रोल डीजल या यूं कहें पहले हम कहें कि कच्चे तेल के भाव पर पड़ेगा।
1: आगे बढ़ते हैं। प्रमुख उद्योग सूचकांक सालाना आधार पर जून में 5% बढ़ा। ये बढ़ोतरी पिछले 5 महीनों में सबसे अधिक है। इससे पहले मई में 3.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। जून के आंकड़ों के साथ ही संशोधित श्रृंखला भी पहली बार जारी की गई है, जिसमें आधार वर्ष को 2000

0: 11-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। नई श्रृंखला के अंतर्गत प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की संख्या 8 से बढ़ाकर 9 हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी शुरुआती आंकड़ों के अनुसार आयरन ओर के उत्पादन में लगभग 44% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली उत्पादन और सीमेंट उत्पादन में 9.8% की बढ़ोतरी हुई। वार्षिक आधार पर स्टील उत्पादन में 4.6% और कोयला उत्पादन में 1.4% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि वार्षिक आधार पर प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7.4%, रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में 4.5% से अधिक, कच्चे तेल के उत्पादन में 4% से अधिक और उर्वरक उत्पादन में 3.3% की गिरावट आई। शिशिर जी, ये एक अच्छी बात है कि ये बढ़ोतरी हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं? संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी।
1: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जितने भी हमारे आर्थिक सूचकांक हैं, अगर हम बात करें GDP, हम बात करें महंगाई दर की, और अब जो है ये प्रमुख उद्योगों की बात करें, इसके आधार वर्ष का बढ़ना इसलिए आधार वर्ष का तय नए सिरे से तय होना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो वास्तविकता के करीब होते हैं। अभी जैसा कि आपने कहा कि 2011-12 पहले आधार वर्ष था, अब 2022-23 है, तो अगर आप GDP का भी देखेंगे तो 2022-23 हो गया है। WPI का भी देखेंगे 2022-23 हो गया है। CPI की हम बात करें वो 2024 हो गया है। तो आधार वर्ष का बढ़ना एक, दूसरा दायरा बढ़ गया है, पहले 8 होते थे अब 9 हुआ, और इस्पात का आना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्पात जो है वो आर्थिक गतिविधियों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ना चाहेंगे कि ये जो प्रमुख उद्योग क्षेत्र है, ये जो आंकड़े आते हैं, ये हमारे पूरे औद्योगिक क्षेत्र का एक ट्रेलर है। यानी कि जब 28 तारीख को औद्योगिक क्षेत्र के आंकड़े आएंगे तो एक अनुमान आज हम लगा सकते हैं कि वहां पर स्थिति क्या होगी।
2: Right, and our next caller is Kanta from Gurugram. Kanta.
3: Ji, namaste sir.
1: Namaste.
3: Main ye puchna chahti hu ki senior citizen scheme mein maine bank mein paise lagaye hue hain. Haan sir.
1: Ji ji.
3: To isko jaise PPF ka paisa to sarkar deti hai, to isko bank dega ya sarkar degi? Aur zyada ho jata bank doob jaye to fir wo mar jayega paisa zyada karwa diya to.
1: कांता जी, दो बातें हैं। जो आप बैंक में पैसा रखती हैं वो जाहिर सी बात है वो बैंक ही देता है, उस पर ब्याज भी बैंक ही आपको अदा करता है। यदि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अगर आप डाकघर में खोलती हैं, वो पैसा वो सरकार के जरिए आता है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि अगर बैंक डूब जाए, तो बैंक डूबने की सूरत में प्रति शाखा जो है वो आपको 5 लाख रुपए तक का जो है वो आप प्रति बैंक जो है वो 5 लाख रुपए तक आपको मिलता है एक समय में, और बाकी पैसा जो है वो बाद में उसके भुगतान की उम्मीद बनती है। तो बैंकों में जो ब्याज दर है उससे कहीं ज्यादा ब्याज दर डाकघर में है, और वहां पर फायदा ये भी है कि वो ब्याज और मूल दोनों ही भुगतान सरकार करती है।
0: शिशिर, दिल्ली से हमारे साथ दिनेश जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
4: हाँ सर जी, मेरे पास ये अपने फोलियो नंबर है खाली, हमारे पास शेयर नहीं है, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं मतलब हमारे को इश्यू हो जाएंगे जी उसके फिजिकल शेयर?
1: दिनेश जी, अब तो फिजिकल शेयर की तो बात होती नहीं है। आपके पास जिस किसी कंपनी के शेयर है वहाँ के रजिस्ट्रार से आप संपर्क करें, यहाँ उनके जो रजिस्ट्रार होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपका जो पैन नंबर होगा या जो डीमैट अकाउंट नंबर होगा, इसमें से कोई भी एक जानकारी दे करके आप ये पता कर सकते हैं कि वो शेयर कहाँ है। फोलियो नंबर आम तौर पर म्यूचुअल फंड के लिए ज़्यादा यूज होता है, तो अगर म्यूचुअल फंड के उससे है तो आप जो संबंधित असेट मैनेजमेंट कंपनी है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं।
2: शिशिर जी, one question which we were discussing earlier on, if you look at the market situation, domestic market situation, and also the results which have been pouring in over the past couple of days now, so given the situation the world over, especially in the context of the West Asian crisis, how do you see these numbers stacking up? Especially these numbers are so very encouraging.
1: See, I think we need to understand that the impact was starting in the month of February, from 28th of the February. So the first full month was March, and then we have the first full quarter of April to June. Now the big question we are is there that why there the number is so encouraging, why the numbers, I mean, not indicating the kind of stress which we were apprehending. One of the reason is because of the market situation. Market means the consumer market. If you go by the consumption market, the consumption is good in the domestic sector, that is also helping you. You also need to understand what is happening on the export front. Just on 15th of this month, we were going through the export data, and there we found that both export and import both have gone up. Export has also given a very encouraging sign. That means the companies are able to sell their produce outside. Now the concern here is that the cost of production has slightly gone up, and that is why the profitability is of course on a higher side, but it could have been much higher had the cost of production been the lower because of the fuel prices. And also you need to remember that during that period of April to June, we have seen some curb on supply of fuel to various industries, various sectors. Now that supply has been has been normalized, so all these things are contributing in that. So the number one is export number and then the consumption number.
0: Right. और इस बीच बिहार से हमारे साथ टिंकू जुड़ रहे हैं. टिंकू जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
5: नमस्ते मैम.
0: नमस्ते
5: मैम, मैं पोस्ट ऑफिस गए थे, बेगूसराय कोई गांव है, ठीक है, और मैं उससे पूछे थे संतोष पॉलिसी करना है इंश्योरेंस, तो वो पूछा क्या पोस्ट ऑफिस वाला अधिकारी पूछा
1: कौन सी पॉलिसी आपने, टिंकू जी कौन सी पॉलिसी आपने कही,
5: संतोष
1: पॉलिसी,
5: हाँ पोस्ट ऑफिस का है, संतोष पॉलिसी इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस हो या
1: अच्छा अच्छा ठीक है,
5: तो मैं वो पूछा आपका उम्र क्या है, तो मैं बोले 41, तो बोला कि 19 साल का पॉलिसी होगा आपको, 60 साल में आपको पूरे रुपया मिल जाएगा, तो सर वो 2 लाख के इंश्योरेंस बता था प्रति, मगर 1300 रुपया मंथली बोला था जमा करने के लिए,
1: okay.
5: तो 2 लाख से तो ज्यादा पड़ रहा है क्या, जीएसटी वीएसटी वो तो कट रहा है क्या, उसमें पोस्ट ऑफिस में तो कोई एजेंट वगैरह तो है नहीं, उसमें एजेंट चार्ज तो लगता नहीं है, यही मैं जानकारी चाहते हैं. और एक और सवाल है
1: जी.
5: जैसे पीपीएस अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में कराते हैं
1: जी.
5: उसको ब्याज दर में क्या फर्क है और बैंक में क्या फर्क है, दोनों में जानकारी चाहिए सर.
1: पहले अगर मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दूं कि पीपीएफ आप कहीं भी खोलें, चाहे आप बैंक में खोलें या डाकघर में खोलें, ब्याज की दर एक होती है, क्योंकि पीपीएफ को बैंक नहीं चलाता. बैंक वहां पर एक तरीके से आपके लिए एक सुविधा मुहैया कराता है कि आप हमारे यहां आकर के अकाउंट खोल लीजिए, डाकघर में भी आप खोल सकते हैं, तो उसको लेकर के आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. दूसरी बात है कि जो आपने जिस पॉलिसी की बात की, जीवन बीमा पॉलिसी की बात की, पहली बात की देखिए, व्यक्तिगत तौर पर जब आप जीवन बीमा पॉलिसी की बात करते हैं, उस पर कोई जीएसटी नहीं होता है, तो उसमें जीएसटी को लेकर के अगर कोई कहता है तो वो गलत कहता है, व्यक्तिगत तौर पे नहीं है. हाँ, यदि एक सामूहिक आप किसी कंपनी की तरफ से ले रहे हैं तो वहां पर आपको देना पड़ता है. रहा सवाल कि कितने समय के लिए लेना है, वो हर पॉलिसी की अपनी शर्तें होती हैं, और डाकघर की जो जीवन बीमा पॉलिसीज है वो बहुत अच्छी पॉलिसी है, उनमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है और उसमें सुरक्षा भी काफी ज्यादा होती है.
2: Moving on to crude now, the global crude oil prices reversed their early gains today after Iran's foreign ministry said negotiations with the US could be pursued based on national interest. Brent crude was trading 0.8% down at $87.35 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 1.5% down at $81.23 per barrel when reports last came in. Quick comment, Shishirji. On crude.
1: The problem we are facing at this moment is there's still a lot of uncertainty. Sometimes you are finding that the Iran is saying, okay, we are ready to negotiate, but only on the national interest. On the other side, when you hear US president, he has his own way of explaining the thing. So at this moment, today, you will see, I mean, as you just mentioned, that it was down by 8% and it was around 87 barrel.
2: 0.8%.
1: I'm sorry. 0.8% and it was $87 a barrel. For us, from the Indian perspective, it is coming down below 80. Then only there will be some relief. But anything above 80 is not good for rupee as well as for prices of petrol and diesel.
2: Right. And in the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 0.5% up at 1 lakh 42,390 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.2% up at 2,19,607.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से कार्यक्रम की, इस बेहतरीन से गीत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र से पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित की गई और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। दोनों नेताओं ने व्यापार, समुद्री साझेदारी, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को बढ़ाने पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी के बारे में भी बात की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न मुद्दों पर अपना पक्ष रखेगा। सिक्किम के नाम

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूँ राखी आपके साथ।

कर्ज फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहब्बत से दूर रहने की हिदायतें तो सदियों से दी जाती रही हैं, मगर इश्क कब किसी नसीहत का मोहताज रहा है। दिल जब किसी की आहट को अपनी धड़कन बना ले, तब दुनिया की हर सलाह, हर दलील और हर रोक बस एक आवाज बनकर रह जाती है। आखिर इश्क के मामले में कौन किसी की सुनता है, या तो दिल ही फैसला करता है और वही अपना अंजाम भी लिखता है।

डिस्को डांसर फिल्म का गाना आपने सुना बप्पी लाहिड़ी की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत भी दिया बप्पी लाहिड़ी ने। वो लम्हे, वो बातें, वो एहसास जो कभी मेरी दुनिया थे। कुछ रिश्ते भले ही वक्त की धूल में ओझल हो जाएं, मगर उनकी महक उम्र भर दिल में बसी रहती है। तेरे प्यार की वही खुशबू आज भी मेरी यादों में उतर आई है।

टूटे खिलौने फिल्म का गाना आपने सुना येसुदास की आवाज़ में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या माई

ऑफ के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:35 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत

बातों बातों में फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। कभी कभी मोहब्बत अल्फाज की मोहताज नहीं होती। दो निगाहें मिलती हैं, दो दिल एक दूसरे की धड़कनों को सुन लेते हैं और बिना किसी इजहार के एक रिश्ता जन्म ले लेता है। यही तो प्रेम का सबसे खूबसूरत रूप है, जहां खामोशियां भी गुफ्तगू करती हैं और बिना कहे सुने ही दिलों की बात हो जाती है।

दीदारे यार फिल्म से आपने ये गजल सुनी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। अमीर मीनाई ने इसे लिखा था और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आपने इस गजल में एक बात महसूस की, यहां आहिस्ता आहिस्ता इस शेर की जान है, यहां जल्दबाजी नहीं बल्कि उस पल को जीने की रवानी है जहां हर नजर हर मुस्कान और हर झलक अपने आप में एक मुकम्मल कहानी बन जाती है।

कभी कभी हिंदी फिल्मी गीत प्रेम की उस पहली हलचल को इतने खूबसूरत अंदाज में बयान कर जाते हैं कि शब्द सीधे दिल में उतर आते हैं। शायद यही वजह है कि ये गीत सुनते हुए महसूस होता है कि सच्चा प्यार जब दिल को छूता है तो उसकी खुशबू सिर्फ यादों में नहीं पूरे वजूद में उतर जाती है। दर्द फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे नक्श ने लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

वक्त हुआ है 12:52 और ठीक 43 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

बेताब फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर अरुआल्डो मार्टिनेज आचावास केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित व्यापक चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी के बारे में भी बात की। भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस दुखद घटना में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 की हालत गंभीर है। मंत्रालय ने बताया कि घटना के समय जहाज पर 5 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 17 सदस्य थे। मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों पर हमला तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा डालना निंदनीय है और इससे बचा जाना चाहिए। सरकार ने मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन एक सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं। उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। नामची SSP ने बताया कि NDRF और स्थानीय एजेंसियां उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। हालांकि गैस रिसाव के कारण फंसे हुए लोगों को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। सुरंग ढहने के बाद गैस रिसाव की सूचना मिली थी। यह घटना मिमरंग पुलिस चौकी के अंतर्गत हुई।

और खेलों में पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणय टीम का हिस्सा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ।

काला बाजार फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने। इतने प्यारे गीतों का साथ हो तो नींद भला कैसे आए। हर नगमा किसी याद को छेड़ देता है, हर धुन किसी एहसास को जगा देती है। ऐसी रातों में आंखें भले ही जागती रहे मगर दिल सुरों की चादर ओढ़कर एक खूबसूरत सफर पर निकल पड़ता है।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 से आपने गाना सुना, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। पीएल संतोषी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया कल्याण जी वीर जी शाह ने। गीत सुनते सुनते जब नींद आंखों में उतरने लगे तो लगता है जैसे सुर लोरियां बन गए हों। हर धुन धीरे धीरे मन को सहलाती है और हर शब्द सपनों का रास्ता दिखाने लगता है।

मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है। क्या खूबसूरत एहसास है इस पंक्ति में। कभी किसी की याद, कभी किसी का ख्याल, तो कभी कोई प्यारा सा नगमा। कुछ तो है जो रात भर आंखों को जगाए रखता है। नींद आती भी है तो ठहरती नहीं, जैसे किसी ने चुपके से उसे अपनी हथेलियों में समेट लिया हो। पूजा के फूल फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने। हर रात चांद तो अपने वक्त पर लौट आता है, मगर जिसका इंतजार हो उसके कदमों की आहट नहीं आती। फिर भी दिल उम्मीद का दिया बुझने नहीं देता, शायद अगली चांदनी रात के साथ वो भी लौट आए, जिसने कभी हर उजाले को अधूरा बना दिया था।

पतिता फिल्म का गाना आपने सुना, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

हुआ है 1:35 और ठीक 1 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आपने सुना शबाब फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। इश्क की दुनिया में आशिक अपने महबूब से जुड़ी हर राह, हर गली, हर याद को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज मान लेता है। यही वजह है कि ऐसे गीत सुनते हुए हमें एहसास होता है कि मोहब्बत का असली रंग पाने में नहीं, बल्कि उसे पूरे दिल से महसूस करने में है।

कभी कभी रिश्तों में कोई गुनहगार नहीं होता, बस हालात ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां दोनों तरफ दर्द होता है, दोनों तरफ इंतजार होता है और दोनों तरफ अनकही बातें रह जाती हैं। ऐसे गीत हमें सिखाते हैं कि हर बिछड़ने वाली कहानी में एक ही दिल नहीं रोता, कई बार दोनों ही अपने अपने हिस्से का गम चुपचाप जी रहे होते हैं। आपने सुना कुंदन फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया गुलाम मोहम्मद ने।

रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

वक्त हुआ है 1:47 और ठीक 24 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बेगाना फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया सपन जगमोहन ने। यादों की भी अपनी एक अजीब फितरत होती है। हम समझते हैं कि वक्त ने हमें उन्हें कहीं पीछे छोड़ दिया है, लेकिन फिर किसी शाम की खामोशी, किसी हवा के झोंके या किसी पुराने नगमे की धुन उन्हें फिर से हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है।

वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 17 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्किस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर और कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत में के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा को अधिक सुविधाजनक और यात्री अनुकूल बनाने के लिए डिजिटल लोकल पास और मार्ग मित्र सहायता केंद्र की शुरुआत के साथ राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर डिजिटल सेवाओं को आगे बढ़ाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि नए डिजिटल लोकल पास के पात्र यात्री टोल प्लाजा जाएं बिना राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मासिक टोल पास खरीद सकते हैं। प्राधिकरण ने मार्ग मित्र सहायता केंद्र भी शुरू किया है। यह राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप में एकीकृत डिजिटल सहायता मंच है। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं, उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। और खेलों में PV सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष सेट्टी और HS प्रणय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आर एस रघु।

वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 2 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ।

वो सात दिन फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और शबीर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कितनी सहज और गहरी बात है ये, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। प्रेम कोई फैसला नहीं, एक एहसास है। ये ना तो किसी योजना का हिस्सा हो सकता है, ना किसी तर्क का। कब कोई मुस्कान दिल में उतर जाए, कब किसकी आवाज अपनी लगने लगे, और कब किसी की मौजूदगी जिंदगी का सुकून बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता।

जुर्म फिल्म का गाना आपने सुना, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में। देव कोहली ने इसे लिखा और संगीत दिया आनंद राज आनंद ने। जिंदगी हर दिन एक सी नहीं होती, कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी परेशानियों की छांव। ऐसे में सबसे बड़ी ताकत किसी का साथ होता है, एक ऐसा साथ जो हालात बदलने पर भी ना बदले।

लहू के दो रंग फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। फारूक कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

वक्त हुआ है 2:35 और ठीक 32 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आशा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। जिंदगी हमें यही सिखाती है कि कुछ चीजें कितनी भी संभाल कर क्यों ना रखी जाएं, वक्त, हालात या लापरवाही की एक चोट उन्हें बिखेर सकती है, लेकिन संगीत की खासियत देखिए, वो टूटे हुए दिल की आवाज भी बन जाता है और बिखरे हुए एहसासों को फिर से समेटने का हौसला भी देता है।

कुछ एहसास उम्र के साथ फीके नहीं पड़ते। तेरे पहले प्यार की खुशबू आज भी मेरी सांसों को महका रही है और हर धड़कन जैसे उसी अनकहे मासूम से एहसास का गीत गुनगुना रही है। फिल्म बदलते रिश्ते का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

एक जान है हम। इस फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया अनु मलिक ने।

वक्त हुआ है 2:54 और ठीक 50 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही सुनेंगे कार्यक्रम आप पंकज गोस्वामी के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर

0: कर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मानसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के हिंसा में बदलने से 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी कल घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक और हिंसक बर्ताव किया। वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देशों के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले की SI जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अपने पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा अवास्केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित व्यापक चर्चा की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। ओमान के मस्कट में कल FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप 2026 में भारतीय जूनियर पुरुष और महिला टीमों ने अपने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारतीय टीमें पुरुष और महिला वर्ग के एलीट पूल में हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note yesterday. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the neat paper leak case. Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to the father Emir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Union Minister Jagat Prakash Nadda met the representatives of protesters

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं पंकज हूं आपके साथ और रात के 3:10 हो चुके हैं और अब शुरू होता है कार्यक्रम हमराही। और अब मैं आपसे मिलता हूं इन दो गानों के बाद और अजनबी मूवी के इस गाने से शुरुआत करते हैं और आप इन गानों का मजा लीजिए। दो गानों के बाद आपसे मुलाकात होती है।

समय के साथ पुरानी चीजों का स्वाद जो है वो कम हो जाता है, लेकिन इन पुराने गानों का टेस्ट तो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आराधना मूवी से लता जी और किशोरदा की वॉइस में ये गाना था, एस टी बर्मन का म्यूजिक और आनंद बख्शी के बोल थे। आधी रात की इस खामोशी में जहां आधी दिल्ली सो रही है, वहीं कई लोग जो है वो अलग अलग कारणों से जागकर कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। कोई अपनी जॉब कर रहा है और कोई जो है कुछ और काम कर रहा होगा, जैसे कि मैं यहाँ स्टूडियो में बैठ के आपके साथ आपको जगाए रखने के लिए आपके साथ बातें कर रहा हूँ। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं पंकज हूँ आपके साथ, और पुराने ड्यूट्स गानों का कलेक्शन लेकर हमराही शो में मैं आपके साथ रहूँगा इस पूरे घंटे। और देखिए, एक चीज़ और भी मुझे बतानी है कि प्यार जो है ना वो किसी से भी हो वो खुशी ही देता है, तो इन गानों से मोहब्बत करने वालों के लिए सुकून की रात है। मैं इन दो गानों के बाद आपसे दोबारा मिलता हूं। अभी के लिए दहलीज मूवी से महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये गाना।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

एक मैं और एक तू मूवी से ये वाला गाना था। और देखिए, अगर बेकार की बातों में हम उलझे रहेंगे ना तो जिएंगे कब? जिंदगी बीत रही है और अपने पसंदीदा इंसान के साथ जो है वो खुशनुमा लम्हे बनाइए और उनका मजा लीजिए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आई नो ये एक फिल्म का मैंने डायलॉग मार दिया, लेकिन बातों से ये जिंदगी तो देखिए हर दिन बीत ही रही है। ये जो टाइम अभी जो हम जी रहे हैं, ये टाइम जो है सुबह के 6 बजे तक नहीं होगा, सुबह कुछ और चीज़ होंगी। तो और उसके अलावा एक और चीज़ मुझे ये बतानी है कि जब आपके साथ आपका पसंदीदा इंसान हुआ तो सच मानिए ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। मैं हूँ पंकज, आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। प्यार बांटिए, क्योंकि इससे ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं है।

गाने में विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी की रोमांटिक केमिस्ट्री गजब की थी। और इस गाने में पता है एक लाइन आती है कि मैंने जिसे चाहा वही यार मिला रहे। आपको पता है कि इंसान ना तभी खुश रह पाता है जब जिंदगी जीने के लिए उसके पास उसकी पसंद का एक शख्स उसके साथ हो, और उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश तो करनी ही चाहिए ताकि आगे जाके आपको इस बात का गिल्ट ना हो कि हमने कोशिश नहीं की। एटलीस्ट ट्राई करेंगे, मिल गए सो ठीक है, बाकी तो किस्मत की बात है ही। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर हमराही शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ। समझौते वाले रिश्ते जो हैं उनको जोड़ने से बेहतर है कि पसंद के शख्स के साथ जिंदगी का हिस्सा बन जाना।

ये आधा साल बीत चुका है और समय तो मानो एकदम भाग रहा हो। वैसे हमराही शो का टाइम भी जो है वो पूरा होने वाला है और अब अगले घंटे नेक्स्ट शो अरुणिमा में मैं पंकज आपसे दोबारा मिलूंगा। तो इसी तरह सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। और अभी कुछ मिनट जो बचे हैं उसके लिए आप इस शो का ये गाना सुनिए और बस ऐसे ही इंजॉय करते रहिए।

0: संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में हिंसा में बदलने से 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक और हिंसक बर्ताव किया। वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देशों के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने बताया कि घायल पुलिसकर्मियों की मेडिको लीगल जांच चल रही है। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तन योजना को राजधानी में लागू करने और उसका समर्थन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार यह योजना पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों तथा बसों को हटाकर उनकी जगह BS6 कड़े प्रदूषण मानकों वाले या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, जिससे वाहन से होने वाले वायु प्रदूषण और उत्सर्जन कम किया जा सके। और खेलों में ओमान के मस्कट में कल FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप 2026 में भारतीय जूनियर पुरुष और महिला टीमों ने अपने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारतीय टीमें पुरुष और महिला वर्ग के एलीट पूल में हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. Monsoon session of Parliament began on a stormy note yesterday. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues including the NEET paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to six former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Emir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Union Minister Jagat Prakash Nadda met the representatives of protesters in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation, and they submitted a written petition to the government at around 4 p.m. More than 118 police personnel were sustained injuries yesterday when a protest escalated into violence in New Delhi area. The injured include senior officers of the rank of Special Commissioner of Police, Joint Commissioner of Police, Additional Commissioner and Deputy Commissioner of Police. In a statement, the Delhi police said, during the protest, the protesters displayed unruly, aggressive and violent behavior, and despite repeated warnings and lawful directions, they refused to disperse and violated the prohibitory orders in force. Delhi police said the protesters attacked police personnel, vandalized police and other government vehicles. The police said during the scuffle, around 60 protesters were also reported to get injured. It said around 70 protesters have been detained and appropriate legal action is being initiated and an FIR is being registered under the relevant provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita and other applicable laws. President Draupadi Murmu has called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The president was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau yesterday. Referring to the vision of Viksit Bharat 2047, President Murmu said, India seeks partnerships based on trust and shared prosperity, while Moldova's strategic location and skilled workforce offer promising opportunities for Indian businesses. Earlier, President Draupadi Murmu and her Moldovan counterpart Maya Sandu held delegation-level talks. India has deposited its instrument of acceptance of the World Trade Organization WTO agreement on fisheries subsidies AFS yesterday, thereby becoming a party to the agreement. The Ministry of Commerce and Industry said that the WTO agreement prohibits government support to illegal fishing activities and over-exploitation of stocks, contributing to the protection of marine life. India is the 123rd member of the WTO to deposit its instrument of acceptance. The agreement focuses on subsidies related to marine wild capture fishing and fishing-related activities at sea. Importantly, aquaculture and inland fisheries remain outside the scope of this agreement. In Himachal Pradesh, all educational institutions in Kangra, Mandi and Sirmaur districts will be closed today in view of a red alert issued by the weather department, officials said. The Met Office has issued a red warning for heavy rain in Chamba, Kangra, Kullu, Mandi and Sirmaur districts tomorrow. Authorities have asked people to follow official advisories and contact the state emergency helpline 1070 or the district emergency helpline 1077 in case of any emergency. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for very heavy rainfall over Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir today. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh during the next 24 hours. The Indian sub-junior men's and women's teams made winning start to their respective campaign at the FIH Youth Hockey 5S Asian Championship 2026 at Muscat, Oman yesterday. The Indian teams are placed in the elite pools of the men's and women's competition. And that is the end of this news bulletin.

सुबह के 4:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी पंकज के साथ। इन दो गानों के बाद आपसे मिलता हूं। शुरुआत करते हैं जीवनधारा फिल्म के इस गाने के साथ, SP बालसुब्रमण्यम की आवाज में।

आशा जी की आवाज में गाए हुए गाने। अगर तुम ना होते मूवी का ही गाना आपने सुना था, गुलशन बावरा के बोल और आर डी बर्मन का म्यूजिक था। आज 21 जुलाई मंगलवार है और मैं पंकज अरुणिमा शो में आपके साथ हूँ। देखिए, समय को भी ना थोड़ा सा समय देना चाहिए ताकि वो हमारे लिए मंगल परिस्थितियां बना सके, यानी धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो जिंदगी को जी भर कर जीते रहिए और जो होना है वो तो होकर रहेगा ही। तो आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। खैर, अब इन दो गानों के बाद मैं मिलता हूँ आपसे, तो ऐसे ही इन गानों का मजा लेते रहिए और फिर से आपसे मिलता हूँ।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दिल्ली में से बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, अभी मैंने स्टूडियो की खिड़की से देखा, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। वाणी जयराम की आवाज में गुड्डी फिल्म से ये गाना था, गुलजार के बोल और बसंत देसाई का संगीत था। जब जिंदगी में अपने दम पर लाख जतन के बाद भी परिस्थितियां सही ना होना, और तब हमें ऐसा करना चाहिए, यानी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आपको पता है प्रार्थना में जो है वो बड़ा बल होता है जो असंभव को भी संभव कर देती है। बस प्रार्थना जो है वो सच्चे मन और अच्छी नीयत से होनी चाहिए, जिसमें किसी का भी बुरा ना हो। यकीन मानिए प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और पूरी भी की जाती हैं, इसलिए हर पल प्रार्थना करते रहिए, कुछ अपने लिए कुछ सबके लिए। हाँ।

इस गाने की एक एक बात बहुत सच है। और पता है मेरे बड़ों ने हमेशा मुझे समझाया है कि कभी भी किसी भी चीज़ का ना अहंकार मत करो, क्योंकि जो अच्छा आपके पास है उसे हमें ज़रूरतमंदों को बांटनी चाहिए। और ये बात सच भी है कि अहंकार जो है वो मनुष्य के पतन का कारण बनता है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर अरुणिमा शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ। अहंकार ने न जाने कितने लोगों को नष्ट कर दिया, इसकी ढेरों कथा कहानियाँ जो हैं वो हमें असल जीवन में भी देखने सुनने को मिल ही जाती हैं। इसलिए विनम्र और प्रेम से भरकर सबको सिर्फ प्यार बांटिए, क्योंकि प्यार से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं।

किशोरदा की आवाज में मशाल फिल्म से आपने ये वाला गाना सुना। और अब जो है अगले घंटे मैं पंकज भोर सुहानी शो में आपसे, यानी नेक्स्ट शो है ये, इसमें आपसे मिलूंगा, क्योंकि और बड़ी सुबह होने वाली है। वैसे तो अभी मैंने स्टूडियो की खिड़की से बाहर जाकर देखा तो अभी दिल्ली में जो है बूंदाबांदी हो रही है, यानी बाहर का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा है और सुबह का नज़ारा तो होता ही हमेशा बहुत ही प्यारा, मन को खुशी देने वाला होता है। तो थोड़ी देर में सुबह 5 बजे से आप हिंदी और इंग्लिश में न्यूज़ सुनेंगे और फिर 5:10 पर मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। अभी ये वाला गाना सुनिए येसुदास की आवाज़ में, इस टाइम के लिए एकदम परफेक्ट गाना है फ्रॉम द मूवी हैसियत।

0: सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों पर सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बीच कल दो दिनों के सदन की कार्यवाही के कई बार बाधित हुई। हंगामे जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रमण और हिंसक वार्ताओं किया, वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देश के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वाले में पुलिस कर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी के घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने में पुलिस के सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन के सहयोग करने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में बारिश के जुड़ी घटनाओं में जम्मू संभाग में 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में ऐसे अगले 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 5:10 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम भोर सुहानी। मैं पंकज आपके साथ इस शो में रहूंगा। अभी के लिए शुरुआत करते हैं दो गानों से, रामलखन फिल्म से ये गाना आप सुनिए और उसके बाद दो गानों के बाद आपसे मिलता हूँ।

अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में संगीत फिल्म से ये गाना था संतोष आनंद के बोल और आनंद मिलिंद का संगीत था। बहुत ही सुंदर सी सुबह का नज़ारा दिल्ली का इस समय है और अभी मैंने स्टूडियो की खिड़की से देखा है हल्की हल्की बारिश हो रही है और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। 21 जुलाई मंगलवार का दिन दिल्ली शहर भी जाकर जो है अपने अपने काम पर जाने की तैयारी करने लगा है और जाना भी है भाई क्योंकि आज मंगलवार है तो काम तो करना पड़ेगा। मतलब अगर सैटरडे या संडे होता तो बात अलग होती लेकिन नहीं आज ट्यूसडे है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा वैसे इन सबके साथ ना मुझे ऐसा आपसे एक बात कहनी है कि देखिए हम सबको पता है एक बात समझनी चाहिए कि जिंदगी बीतेगी और बीत रही है लेकिन इसे कैसे बिताना है यह आपके सकारात्मक एक्शंस पर डिपेंड करता है। तो जब बिताना ही है तो खुशी से क्यों ना बिताएं, है ना। इन दो गानों के बाद मैं पंकज आपसे फिर से मिलता हूँ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मेरे यानी पंकज के साथ भोर सुहानी शो में। ऐसे ही सुनते रहिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे